0: मौके लाया था ना मौकी लाया था ना उन्हें मौको हानि मारी न्यू आरी वा मौकी लाया थी वाकु परी कथिया ने ने पाही उइमे वाकुन्या
1: Potarti.